0: second job 吧。
1: 哦哦哦。
0: 后来你们这国人呢，想讲退休单吧，过去动不起我了，都是上了当，是不是？
1: 哦哦。
0: 顶着这老婆多叫过去进国外干的 top 是啥啥？我顶那松江矿业过去三浪后面你路了，大家心就这边我担不的。
2: 啊。
3: 过去三浪不挨顶着这中青州这个哈古巴米。
0: 对对，说说该该哈么古巴米先当老婆担心多啊。
1: 嗯。
0: 长不虚伪呢，矿业过去三浪后面你路了，大家心就有人难解。他们的矿子不灵了，该找一边拉进去，彻底开解这了，就不得。
3: 彻底开解了。
0: 哦。这咋是的？过去我也干了啥比那不跟多民多。
3: 那真空。
0: 嗯。
3: 过去过去。कुछ दिन इनको का दे तो से शुरू नष्ट है ना तंदरा चिंबाना समझते यो
0: कुछ दिखरा को का शुभ ना बारिया ले रुंडो रे वे तिले ने खाखा सैशो
1: जको का जन कुछ सेन बो मेजो
0: हा जी ता तिले साजा जे बन जे यो मारता
1: हां
0: सादा ना बो जो जे कोरे
3: ता कुजो साबा नो आने
0: किरान देसी दा मिजु छाओ बु से सा के बो का जे से में दु बे तो दो कुरान के खा गान से बे हामा दे जों बुली के मि हा तो का तो दा का तो जे गे में दु बे ने
1: जको
0: ओ
1: ता जें कुछ दिन ना मेन से या रो शिवे जो छो में जो
0: किरान से जो जंग जंग रे सा
1: ओ
0: दि मेन ना मारे दा
3: आने
0: लो जे जे लो जे खोंग के लो जे के से ले टुम बे कुछ दा जिंग के लो ले दा लंग दो का बा दे तो देंग सा मि के पे जे दा ये का जे दा का जे में दु बे ने
1: ओ जी दे ये दे
3: देंग सा छो आ या गो दे बा या बे शान तो ना दे बा मो शि गो ने丁上几座地开，古树大街开发面，明天还最面舒服。
0: 弟弟赢过球迷，
3: 俺来查查那位。古树大街给开发，你们耽误你不说么？什么啊？都不吃咱牛血。
0: 哦，么老喂，到那这个牛节，给那个白酒当心一杯。
3: 白酒是什么级别东西面？
0: 哦，
3: 一年吃了的吧？这个难做的的吧？古树大街给开发的桌子，给的热到是等一下个家伙，米搭档个老阿爸。
0: 哦，热面，米三把不不讲个几个，三个阿龙八。这大侠生过来，
3: 来，
0: 咱过得去，过得去，过得去。今朝过去三百人，那不跟多民多？
1: 我呢，差不多，差不多，差不多。
0: 那过去三百万噻，当年来不给的，
3: 当年了。
0: 嗯，
3: 但当年工资不够呢。
0: 听那个新娘妹妹，
1: 嗯，
0: 你是我的小呀小苹果，天灵阿姨过去成就人。现在的三娘们都爱你，
3: 这公园也给搞把子了。现在的经济艰难，光我干这是不至于不过。
0: 先生，过去当年人不是更多民族？
3: 我那爸，他一年空
0: 啊。
3: 但过去我的学米学差吧？
0: 我嘞。
3: 过去三米三差吧？
0: 我嘞。
3: 过去当年米当差吧？
0: 我嘞。
3: 但俺们这车工，俺过去多嘴讲没着啦。
0: 多嘴了？
3: 嗯。
0: 我到这两个过去多嘴讲不赢了，身边不没关系。这两个主管的马蹄们不够多，
3: 他多少钱呢？门子他不是钱白家给俺的，
0: 多少钱把门子不得要嘛的？
3: 哦，
0: 你来了做做的，他当洗了过来。
3: 但你来了，人我那么就过来过来吧。他当洗了，俺姑妈才俺做不弄的。
0: 他当洗了是的，他那么贵就给哪样要嘛的啦？就我的女儿要嘛的。
3: 俺呢，
0: 做的说是让给别人家去才敢做的，
3: 才敢做不啦？
0: 哦，
3: 但见俺那么就待着才敢做不弄，日里待着才敢做不弄。
0: 啊，弟弟看开起来学嘛的。
3: 哦，
0: 既然给。做的固步无阻，当人心不公，强东小把将将我花钱没收钱。
3: 哦，
0: 明日先别俺这个来这头都出了，人家个现在都都怕多了，先有了当对钱，别的都都忙咱们这边呢。现在其他老各位故事的刚上春节住不得。
3: 但现在虽然刚没干过，那路军在的越踏实，
0: 越过救命。
3: 但一年啊，
0: 我的丈夫，其他路不脱下，心都心都看不见的，看哪算呢？
3: 看谁难的？
0: 哦。
3: 들키스지역할미카시에게킨데소잉톱단시로된제엘레구슈리엔시다파샤동도샹데농고간슈기
0: 샹데슈기로
3: 오
0: 다시나샹데가르슈두가
3: 네킨다빼차샤지슈노
0: 아
3: 그세나절춘제지치
0: 춘제테비
3: 오유고아지게내셰발깨지는데지드
0: 스계시근데드소
3: 어보다라생미디땅도토마구주스중바세스
0: 내셰바데레그데접송에
3: 민도세스과미어녜마아직가스불레제보다라땅도제주잠바아这个简的不得了세셰자미보다라생미디오도중세스
0: 보다라스나렉자지케레보데가라루툰지스고아슬람데다마베아니
3: 예자제
0: 마시고데아스캬세엔데르구르베아니
3: 지자제
0: 다키랑게니즈딘데나테모망고시다투뉴예
3: 투뉴예라
0: 테모치네부글로제저용디다마나오진도카보시부제용게
3: 아제
0: 데네부고게시비
3: 어겐데스
0: 부부라드리나오진도카보딘데게라게로제카르티중러비
3: 엔비
0: 네비엔데럽게파라지링아롭젠기부기아오죠난저갠라가롭젠도스고초프다가롭도초 lop tengi gwa ne shubo to kesa tunpe temanchi lo shio aasungi